राघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम् स्वीयान् समस्त निगमान् प्रविलोक्य सूक्ष्मे सद्धाट सङ्ग्रह विषय